0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഹോം 92.2 FM. ഹോം ഇസ് എ ഫീലിംഗ്.

0: You're listening to Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: धान धा धीना का धा धीना धान धीना धीना का तेरे के धा धीना त्रक दे घीना धा धा घीना धिन धिन धिना ना धिन धिना त्रक दे तेरे के धा धा धिना का धा धिना त्रिकड़ धा धिना त्रिकड़ धा त्रिकड़ धी त्रिकड़ धा धा धिना के ना के ना धा धा के